आज है मरने वाले। अगर सेज दैट यू नो वी आर गिविंग लाइफ अपॉन पेरिशेबल थिंग्स, वी आर फिलिंग आवर हार्ट्स विद सैंड, विद सॉइल, विद पेरिशेबल थिंग्स, वी इन फैक्ट वी आर डाइंग अपॉन थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी डाइंग। हजरत मौलाना अशआर, दोज दैट वे दैट हैड इंग्लिश इन देयर, आई विल जस्ट शेयर अ फ्यू कपलेट्स जस्ट टू show Maulana's capability and how beautifully he put his message forward. On one occasion, he was speaking about evil glances. He said, how bad is evil glances, how evil this action is, and how can you ever get satisfaction in sin, in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, Kitni hai buri bad nazri और कितना ईवल एक्शन, द इंक्लूजन ऑफ ईवल एंड एक्शन यू नो इन दिस पोएट्री, कितनी